से बढ़ती पुरस्ताओं की उस गांव में चलती। बोला बेटा तुम कर रहे हो गलती, मुझे मार के मिलेगी तुम्हें मौत भी जल्दी। मेरा बेटा आने वाला है शॉप में बरकी लेके आएगा, वो लौंडे तो होगी गर्दी। उसने बातों में लगाया तब तक शॉप में चलती। एक महिला

0: अरे ओ, मुझे मुझे मत मारो, मैं बेबी बच्चों वाला आदमी हूँ, तीन तीन बेबियां है, 10-15 बच्चे हैं मेरे, मुझे मत मारो।
1: सर सेल्फी ले ले क्या पॉलिसी पर्पस के लिए?
2: Y 34 minutos.